हमरे दुष्ट सवा तुम काबहो, आप हाथ दा मोहे बचावहो, सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सभा करतारा, मोर अच्छा निज करदा करिया, सब बैरन को आज संघरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्र हमारे मारिया है, आप हाथ द मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्रिया तुझू करे और अच्छा।

जन जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप आपनी बूझ अचार तुम सब हीते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड अचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीन तनह पहव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राब कही भूपा अंडज जेर जसे तुजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा होय बैठा कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संघरो दोष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि न हर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छो सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तहारो कहा दार्द दुष्ट दोखते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता केल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखे अन को छह करता सिरे अस तुझ जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावा सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ल सुना गुंग जो याहि सुरस ना पावई सुना मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट ना तिन नरके रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुन तीन कहिज भाद्रव सुटी अष्टमी रब बारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित रूप ख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अपजू तो हरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दै राख मोहे मन करम बचन विचार चौपई मैं न गणेश प्रथम मनाऊ किसन बिसन कब हूं न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिबला की मोरी पगिन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार वाह गह की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चला राख आप मैं और न दलै तुम हम करो सदा प्रतपारा तुम साहब मैं दास तहारा जान अपना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रित पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दय हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र अचारो चूक हुए कब लिहो सुधारो कबे उबाच दोहरा जो निज

अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री इस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तोहे।

पे तरस पयोई, तरस पया मह राम तो होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलै तां जीवां, तन मन थीवै हरिया, तरस पया।

हरे हा पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माही सुन कै जम के दूत नाय तेरा छड़ जाहे भाव जल बिखम असगाह गुरसबदी पार पाही जिन को लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सानु कृपाल संभाले साहे साहे व्यर्था कोई न जाए जे आवै तुद आहे सलोक महला पंजवा आंतर गुर आराधना जेबा जप गुर नाहो नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाह सतगुर से तीरत्या दरगह पाइया ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए बात दे जग मैं उत्तम काढ़िया है विरले के महला पंजवां रखे रखण हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना बिसारियन सार जना का संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाई तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाई वाहिगुरु जी का खालसा।

अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई आय जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए गुरु नाम निधियावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां छो साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया बन सकिया। देख चलाई तेग वाही दे के अंड किता तन प्यारियां सजियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जरा सिंह सिंघणियां ने धर्मे असीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं आरिया सिखी केसा सुवासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्तां

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दसना प्रभु को सिमरस तन बनते प्रभु को सिमरस पद बनते प्रभु को सिमरस जन परवान प्रभु को सिमरस पुरख प्रदान प्रभु को सिमरस बहमता जय प्रभु को सिमरस सर्व के राजे प्रभु को सिमरस सुखवासी प्रभु को सिमरस सदा विनाशी

चलाए जय मुस्को लोवे अत पारी हर को नाम के नमाय उदारी अनक पुनचन करत नहीं तराय हर को नाम कोड पाप पर हराय गुरमुख नाम जप हो मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सगल सिज को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया।

भाई देखो अपने सो बालो राय सा संग मैं चोराय देखो जन्म मरण ते डराय सा जना की सरणी पराय

सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक दे कट वसे हर नाम स्वरूप।

जिसने अपना हुक्म मनाया सर्व तो ना नितन पाया गंत साव अपनींदे रास खाद बीज बरते आनंद उलास अपने मान कत बार स्वाले अज्ञानी मंदरोस करे अपनी प्रतिता भी खोवे बरुस का विश्वास न होवे।

मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या पर दर्भ को हरा मिथ्या नेत्र पेखद पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण पर विकार खोतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन पर विकार मिथ्या बासले तु बेकार बिनभुज मिथ्या सब सबल दे नानकर नाम ले बिरथे सागत की आरदा साध मना कह हो सुचा।

साधक संगम को जल होत सा संग मन सगलिक होत साग संग मिटय अभिमान साग संग प्रकट सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नेरा सा संग सबोध नवेरा साग संग पाय नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन।

सारक संग सुनो हर नाओ सा संग हर के गुण गाओ सारक संग नाम अंत बिसरै सा संग सर पर निस्तर है।

कोड़ दस भूमंडल कई कोड़ ससियर सूर्ण खत्र कई कोड़ देव धान इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सुतार नाना जस जस बावे तेस तेस निस्तारे कई कोड़ राज ताम सात कई कोड़ भेद प्राण सिमर तिर साध कई कोड़ की रत्न सुमंद कई कोड़ नाना प्रकार जनता

प्रवान कोट कर्म करे हो तारे स्वरम पावे सगले बृतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनक जतन करा तम निंद्रा बाय हर दर्गा को कैसे गवाय

तो करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार है। प्रभु की सद करो दिन रात सत्य अवस्था करा सब कुछ वर्ते जिसका किया जैसा करे तैसा को दिया अपना खेलाव करने हार दूसर कौन का है विचार दूसरों कृपा करे तैसा अपन नाम दे बड़पा की नानक जन से श्लोक ताजो सियान सिर दिनो सिमरो हर हर राय एक आश्रम

उनकी सेवा सोई लगे जिसन कृपा करे बड़ पाके नाम जो पाप है बिस्नाब नान तेन पुरको उत्तम कर मान जो कर सुप्रभ कह रहे हैं सदा सदा बस हर संग सह सवाय सोए करने हर पचान सोए प्रभ क्या किया जन मिट लगाना जस सत्य सदाना जिते जत समाय समाय सुख निधान बनाया आपस को अवधि नो मान नान प्रभ जने को जान

धनवंता वे क्या कुकर बेचा सबको तुझका दिया दर बे असुरा देखो उका वे प्रभु की कला बिना कहता वे देखो हे बह दा तार धन गा बार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानी सोजन सुधा रोग त्यो मंदिर को था मैं थमत्यो गुरु का शब्द मने संबंध्यो पा खान नाव चढ़ तरा प्राणी गुरु चरण लगत निस्तराय

नाना विदिनो विचार प्रवना से एक ओंकार नाना चल कर किनमाय पूर्व पूर्व उठाए नाना विद कर पंत बनाए अपनी कीमत अपे पाई साब करते के सब के ठाऊ जप जप जीवे नानक नाव नाम के तारे सगले चंद नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सुलकार नाम के तारे प्रिय सवन नाम के समुद्र सुन सरण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानी चौथे तो पद में सो जन गत पाए रूप साजा का सत्य दान पुरुष सद केवल प्रदान कर तो सत साजा के बाणी स्वरूप पुरुष सतपुरख समय सुमण सतकर्म जा के रचना सतमूल सत सत्य सतकर्णी निर्मल निर्मल जिस सब बलि सतनाम प्रभु का

पहचाने अपनी मत गाते जिसके सिर तो करने हार वरना भूज कर विचार करते कि मित्र जाने किया नान जो तुझ पावे सो वर्तिया विस्मन विस्म वैभ समाज बुझ जाते सा प्रभु के रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ रहे हो जाते जो कठिन हार हो जा क्या संग तरह संसार जो जनका से सोवट पागे जनका संग कलिवला की

att आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अस्पति चरण सत सब प्रसन्न हर पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सब एक नार नाम सत सत्यावनार आप सत सत सबदारी अपे गुणकारी सब सत सत प्रभक्त सुरत सत सत जस सुनता भोजन को सत सब होए नान सत सब प्रभ सोए सत सुरवृदय जनमान करण क्राम त्रिमूर बचाना ध्यान करे देव स्वा प्रभाया तत् ज्ञान तिस मन भगटाया पै ते निर्भव है बसाना जिसे विजय तिसमाय सुमाना बस माय ले बिस गढ़ाई तंको बिन न कहना जाय भुजे भोजनार भवेक नारायण मिले नान के ठाकुर का सेवक आज्ञा करी ठाकुर का सेवक सदा बुजारी ठाकुर का सेवक है मन प्रति ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक प्रपाल नार सेवक राकेन्द्र कर सो सेवक जिस दया प्रभु सारे नान सो सेवक सा सा सुमार अपने जन का प्रजा ठाके अपने सेवक के सर पर राखे अपने दा को दे बटाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक के आप राखे ताकि को न लाके प्रभु के सेवक को न बोचे प्रभु के सेवक उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया निके गिरे में कद राखे बसम कर लश्कर कोट लाख जिसका साधना कटता उतं को राख देकर मान जिद करत वो पा जिसके करते वृत्ति दात मारना राखे वरना को सर्व दिया कर रखा सोए का सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभ अलख विंडाणी बारिंग बार बार प्रभ जप्य पिय अमृत मंत्र त्रिपिय नाम रतन जन गुरु पाया तिस जवर नाय दिसाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ता ने मंत्र नाम में नाम समाने उठ बैठ सोवत नाम को नान जन के सद काम बोलो जय देव बदरा प्रभु अपने जन की निदा करा भगता तुम के जाय प्रभु अपने सोरा सुमाय जो आओ बस सो जाने प्रभु अपने कहो को बचाने ते कि मैं कौन बखाने तुझका गुण कह के न जाने आठ पैर प्रभु सह हजूर को नान से जन पूरे

प्रभु परब्रह्म की दरगाह का उपाय सुनकर वचन करना गाने मन सतो कातम पतिया ने पूरा गुरुआ खोजा का मंत्र अमृत दिल पे के संत गुण बिंद कीमत नहीं पाए राने दिल पावे तुलय मिलाए जय भाई कृष्णता ने एक सर पूर्व पूर्ण बाबे खाओ बोलना पाचु प्राणी का मगोचर परम निर्वाणी निराहार निर्वाय सुखदाय तंग की कीमत गिन न पाए ये उपगत बंधा निधि कर चरण कम हृदय से मेरा चल बल हरे सदगुरु अपने नाने जिस प्रसाद सब रोज अपने अमृत पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोय इस प्रकार नाई कदे बना जाके मन प्रगटा गुंतास आठ बार अरका नाम ले सच वे सेवको दे मोबाए के संग न ले मन में रखे हर हरे एक अंधकार दीप प्रकाश नाने पर मोहन दुख तहते ना से तो तुम्हें ठंड वरताई आनंद व्याद नाठे पाई जन्म के मिटे देश साधु के पूर्ण से पहु चुका निरपो है बस सगल बेहद मत कह का साधन कृपा तारी सा नाम रारी तिल पाई चुके ब्रह्म गण सुनान कर सर्वन निर्गुण अवसरगन भी हो कलातार दिन सकलीम हो अपने चल प्रभा बनाए अपनी कीमतें अपे पाए अरबंधु जनाई कोय सर्व निरंतर को सोयोद्रव्या रूप रंग पे प्रकाश साध के संग रात रचना अपनी कलतारियन कबाना

सारस्वती संरचना मिल करो विचार नाम यदार वृपा समित सरचर कमर ऋतारु कर्ण कर्ण सो प्रभ सम्रथ दृढ़ कर गह नाम हर वत् एहो तन संचो भगवंत संजय का निर्मल मंत एकाश रखो मनमाय सर्वरोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठता वे सुत नर सेवा ते पाव है जैस सुख नित बाचे मित सुख साधु संग परी जिस को कर पली करनी सा सुब दर की सन को पावे रोग न जाए रोग मिटाए रोग कुदलाए सुर धन मेरे नाम धन जपना नि दरगाह परवान

आनंद राम नाम तो करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन के गुण गाओ प्राण तन क्या सुहाओ आठ पैर प्रपे को निराम मिटे या ज्ञान से अंधेरा सुन दसर देव साहो मन चे नानी बल पाओ हालत बल दल सुवार राम नाम अंतर तार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बस सात परिख्या मंत्र नाम जब बोले बलाये दुख दर्द मंत्र पहुंचाए

कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने विखे पमारी प्रभु के उत करो संत मीत सावधानी कागर चीत सुख मनी सह गोविंद गुरु नाम जिस मन बस सोत निदान सर्वेचा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के में सकल ते उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ये पल तेज जन के मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जपै मन कोय सब जग में ताकि गत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर सातुर वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साहब संग मिटा संत कृपा ते जम तय छुटा जाके मस्त करम प्रभ पाए साध सुन नानक ते आए जिस मन वसे सुन लाए प्रीत तिजन आवे हर प्रभ चीत जन मनता का दुख निवार है दुर्लभ दे तत्काल उदार है निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन माए सुमानी दुख रोग बिन सह पह परम

जीते हैं पीते हैं, त्रमान हैं, निधान हैं, त्रबर गए हैं, स्वर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अजूज हैं, अचंज हैं, अमी कैर भी कै तंध है, अबंध है, निर्भूज हैं, सूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नरसरीक हैं,

चापाई अमरी करो हादय रक्षा पूर्ण चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा अमरे दुष्ट सब तुम गावो आभाद मोहे बचावो सुखी बसय मोरो परवारा सेवक सिख सबय करतारा मोर चान करद करे सबैरण को आस करे पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चौन चौन शत्रु हमारे मारिय है आप हाथ मुझे उभर है मरण काल का त्रास निभर है उजो सदा हमारे पच्छा श्रिय सज्जू करो रक्षा राख लियो मय रखना रे साहिब संसाय प्यारे दीन बंधुष्टन के हंता

से लोका न सालाहे जो मर खाक थी, दुनिया न सालाहे जो मर वंजसी, लोका न सालाहे जो मर खाक थी। वाह मेरे साहेबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह। रहाओ

0: Sajja, Ag Sajja, Yugag Sajja, Happy Sajja, Nanak Vosipi Sajja, Ekhu Ankar
1: Sajja, Naam Kattapurik,
0: Kattapurik, Nirbhav, Nirvair, Akal Murt, Ajuni Saiva, Gurpasad Jap, Ag Sajja, Yugag Sajja, Happy Sajja, Nanak Vosipi Sajja, एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर अकाल अजुनी सैव गुरु प्रसाद जप आद सच विगाद सच है भी सच नानक कोशिश भी सच एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर अकाल अजुनी सैव अकाल अजुनी सैव गुर प्रसाद जप आद सच विवाद सच है पी सच नानक होशी भी सच सगल द्वार को शाड़

राम जो दाता मुक्त का संत जपाए नाम, राम जो दाता मुक्त का संत जपाए नाम। नाम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहदा प्रहलाद जप्यो हर जैसे।

लाव करे पिर भावे सुख पाइए जा पे नदर करे बे पिर सलाई अपना सखी सहेली नाल तन सोहे मन मोहे आ रती रंग निहाल शब्द सुवारी सोहनी पिर रावे गुण नाल कामन कामन आवई।

छिड़े जिसे अंतर ज्योति अपार सचे आसन सच रहे सचे प्रेम प्यार जिनी आ पछाणिया घर मैं महल सुथाए सचे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रै भवन सो प्रव जानिए साचो साचे नाए सा धन खरी सुहावनी जिपिजिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा पली पिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भूली जे फिरा

सुख को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए।

बिन सतगुर नाउ ना पाई बिन नावै क्या सुआओ आए गया पछतावना ज्यो सुन्या घर काओ बिन नावे दुख देहरी ज्यो कलर की पीता तब लग महल ना पाईए जब लग साच न चीत शब्द रपे घर पाईए निर्बाणी पद नीत हौ गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ शब्द सलाई मन वसे होमै दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध हंकार नाम सलाहन सद सदा हर राखी और तार सो क्यों मनो विसारिये सब सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्दे ही ते पाईए अरनामे लगे प्यार बिन शब्दे जग भूला फिरे मर जन्मे वारो वार सब सलाहे आपको वडो वडेरी होए।

संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर ना कोए मैं तुझ बिन अवर ना पावई तू पावै।

0: अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत तराए ताना चल गालिए भी मनते रोग न जाए हर नामे तुलना पुजाई सब दिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दात करी बहैवर गैवर दान पूम दान गौआ कणी पी अंतर गर्भ गुमान
1: मन बेद्या गुर दिया सच दान मन हठ बुद्धि केतिया केते बेद विचार केते बंधन जी कै गुरमुख मोख द्वार सचो और सब को पर सच अचार सब को ऊंचा खिए नीच ना दिसे कोए एक भांडे साजिए एक चानण तहलोए कर मिले सच पाइए तुर बख्श न मिटे कोए साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पहाए अकथ कथा विचारिए जे सतगुर मह समाए पी अमृत संतोखिया दरगे पैंदा जाए कट कट बाजे कुंगरी अनद शब्द सुभाए वेले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम न विसरै छूटे शब्द कमाए सिराग महला पहला चित्त